0: अपना रेडियो देश प्रदेश
1: फॉर एडवर्टाइजमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551
2: There is but one God.
3: Satnam.
2: The supreme truth.
3: Karta Purakh.
2: The creator. Eternal truth.

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर है। जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने वो भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत दे विच बंदा की कुछ नहीं कर सकदा है ना। जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदां जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने ओह दिन ब दिन जदों मजबूत हुंदियां ने सानूं वी खिच पैंदी है कि असी वी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी। सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉंकन रोड। उथे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है। काफी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जिड़ियां यह होंगे ने टाइम बीइंग वास्ते यह जिड़ियां सेलां लगदिया ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जड़े ने बच सकते ने उदे नाल फ्री गिफ्ट जड़े ने ज्यादा मिल जाते ने। सो जाके अज का दिन वधिया है जी। जिवें सिद्धू साहब दस रहे कि तुसी पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो की पता पसंद आ जाता है कुछ तो उस गिफ्ट जड़े ने वाह कमाल थोड़ा मिल सकते ने जी। सो अपना लक जड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थोड़ा देन जा रही है जी मनु शर्मा होना का कि थोनू पता है कि ओंटारियो के ऑटो इंश्योरेंस में नवे चेंजेस जड़े ने आ रहे ने। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनीफिट्स ते अदर कवरेजेस लई नवे फैसले न्यू डिसीजंस करने पास करने पै सकते ने। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझदे हो कि ए बदलाव जिहड़ा है ए चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली दी सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो। सही कवरेज होना उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल आने वाली है या तुसी अपने घर की रिन्यूअल चाहते हो बिजनेस इंश्योरेंस लई बैटर कवरेज चाहते हो रेट्स बहुत अच्छे लभ रहे हो तो मनु शर्मा होरां दा नंबर तुसी जरूर लिख के रखो 289-952-9532 289-952-9532 is the number. इस नंबर ते कॉल की जा सकती है ते मनु शर्मा होरां दे नाल गलबात की जा सकती है। लो जी ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर दा नंबर भी थोनू दे दिने। कहंदे कारां रिपेयर करदे आं असी ते ऐसी नवी नवेकली कार बना दिंदे ते पता ही नहीं चलदा। प्रोवाइड कर रहे ने नवे समर टायर्स चेंज करदे ने टायर्स व्हील अलाइनमेंट करवानी होवे हर तरह दा सस्पेंशन दा काम करना होवे इंजन दा काम करवाना होवे ब्रेकां दा काम करवाना होवे एग्जॉस्ट दा काम करवाना होवे ऑयल चेंज करवाना होवे रस्ट प्रूफ करानी होवे गड्डी तां बस फिर ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर। अच्छा जी जे इन्हां दे कोल जांदे हो ते एक प्लस पॉइंट ए है कि दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड पंजाबी। सो थोनू किते भी ऑड नहीं लगेगा कि हाँ जी मैं हुण उत्थे जाके किवें बोलांगा कि मेरे मेरी गड्डी च ए जिहड़ा है दिक्कत आ रही है। कई बार सानू लफ्ज लभदे नहीं है ना तो औखा हो जाता फिर बंदा कहिंदा छड्ड परा मैं इत्थे नहीं जाऊंगा मैं किते होर जाना तो सारे बेनीफिट्स छड्ड दिंदा। सो ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर ते तुसी गेड़ा जरूर लगायो 91 हेली रोड बोल्टन हाईवे 50 ते मेफील्ड दा इंटरसेक्शन है जी होम डिपो दे लागी है। नंबर नोट कर लेने 289-503-6726 नाल दी नाल दूजा नंबर 905-857-7596 इज द नंबर। इस नंबर ते कॉल करना बिल्कुल भी ना भुलियो।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647 702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनूं पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहणी लगदी है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह दी क्रिटिकल इलनेस दा हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नूं, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नूं 6474461616। उमरप्रीत चावला

क्या बात है मित्रों, मरू मरू मरू मरू क्यों करना। बिल्कुल जिंदगी दिती है रब ने, सेहत वधिया, सब कुछ वधिया, ते मरू मरू क्यों करना। जिंदगी जियो खुल के, ते गलबात चल रही सी, बंदा उदास मन होवे ते किद्दां उन्नू वधिया खुश मिजाज बनाया जा सकदा, किद्दां उहदे मन नू होर भी दुरुस्त किया जा सकदा। ते कहिंदे आ गाने गुणे दे नाल भी, गाने सुन के भी हो सकदा। कहिंदे आ जे तुसी वॉक कर सको ना नेचर दे विच, खास करके ते पार्क विच जाके नेचर दे विच वॉक करो, उहदे नाल भी तुहाडा जिहड़ा मन है वह भी बड़ा सही हुंदा, तुहाडी नींद पूरी होवे उहदे नाल भी। ते खास गल जिन्हां दे घर आ, जिन्हां ने पैट रखे होए आ, जिन्हां दे घर पैट ने, कहिंदे पैट रखे होण दे नाल बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। बंदा घर कुत्ता रखिया होवे, बिल्ली रखी होवे, बंदा उहदे नाल खेडदा, सौ गल्लां बातां इधर उधर करदा, ते उहदे नाल भी बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। एक थैरेपी दा ही काम करदे आ घर दे विच जदों पैट्स होण। ते होर बहुत सारियां चीज़ां ने, तुहाडा की कहना है। 905-673-3337 एक ना बड़े ही शानदार मैं देख रहा सी सर्वे दे विच ये चीज़ आई है। कहिंदे है बंदा ना उदास बैठा ते धक्के दे नाल ना उदां ही बस एक जाली समाइल नहीं हुंदी, एक फेक समाइल, तुसीं बैठे हो बस समाइल करनी है, तुहाडा उह हासा नहीं आ रहा, बस तुसीं समाइल करनी है। कहिंदे हुंदा की है, जिहड़ी जाली समाइल भी हुंदी है ना उहदे नाल तुहाडा मूड बेहतर हो जांदा। आराम नाल बैठे हो बस इदां ही समाइल वाला मूँह बना के देखो, ते उह तुहाडे चेहरे ते तुहानू उहदा अहसास हुंदा, तुहानू पता हुंदा भी हाँ यार मैं इदां ही फेक समाइल कीती है, पर इहदे नाल मेरे मूँह दे जिहड़े मसल्स है इहनां दे विच फर्क पै गया। करके देखियो, मैनूं पता कई बंदे हुण इस टाइम फेक समाइल कर रहे होणे ने सुण के, इदां इदां करके शीशे वल देख के, पर फर्क पैंदा। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ।

0: और उनकी स्पेशल देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5533 पर कॉल कीजिए। 9054567733 Alpha Optical, your vision is your business।
1: पातशाही दसवें कब्रबाज बेनती चौपाई अमरी करो हाथ अच्छा पूरण होए जिंदगी अच्छा सब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट समय तुम पाओ पाप पाप दे मोहे बचाओ सुखी बसे मानो परिवार जीवत सिख समय कर पारा बुरे छानिज कर दे करे सब दिन को आज सुंदर है पूरन होए हमारी आशा दूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छोड़ कोई अब न जाओ जो कर जाओ सो तुमके आओ जीवत सिख हमारी तारी है चुन चुन शक्ल हमारी भारी है आप बात दे मुझे उपले पल पाल पाता से मरे जो सदा हमारे बच्चा जीस तुझ जो करियो रच्छा राख ले हो महरा कड़वारी साहिब संत सहाय प्यारी तीन बंद दुश्मन के

0: राजा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।

0: एकादश शतवारं जपित्वा सर्वशत्रुन वशमानयति नान्यथा इति श्री मारुति स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: अथ सप्त श्लोकी दुरा।

श्रीरं न जायते तस्य धनं शीघ्रम वाप्नुयात्। करणे गर्भसम्भूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्र मङ्गारकस्येतत् परणीयं सदा नृवे न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारक महाभाग भगवन् भक्त वत्सल त्वां नमामि ममाशीष मृणमाशु विनाशय। ऋण रोगादि दारिद्र्यं ये चानेयमृत्यवः वयक्लेश मनस्ताप।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम। सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और तो तभी हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। और आप सभी का धन्यवाद करते हैं तो क्योंकि आप इतने सालों से हमें सपोर्ट करते आ रहे हो, हमारे प्रोग्राम को सुनते आ रहे हो, सराहते आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहले परमात्मा का नाम ज्यादा प्ले करते हैं ताकि आपके लिए आपके घर में कार में अच्छी वाइब्स हो जाएं। तो इतनी लंबे समय के लिए आपके लिए ये सारा कुछ हम प्ले करते हैं पॉजिटिव फीलिंग के लिए। गाने तो सभी सुन लेते हैं कहीं ना कहीं के, तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज इस वीकेंड मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है। ठंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बस बहुत ज्यादा गर्मी थी कल थोड़ा तो, लेकिन बाद में बारिश हो गई तो थोड़ा बेहतर हो गया। आज तो ठीक ही है, ना इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, थोड़ी सी बारिश हो गई बीच में, थोड़ा सा धूप भी आ गई। तो आइए इसी को एंजॉय करते रहेंगे। जो भी ऊपर वाला हमें देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं और उससे प्रे करते हैं कि इस दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए और इस दुनिया में शांति के लिए, फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहते हो और बढ़िया प्राइस पे लेना चाहते हो तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूदा, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। और आप उनकी वीकली मंथली स्पेशल देखने के लिए आप बढ़िया टीवी लेंगे, आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर किचन की गैजेट्स लेटेस्ट एडवांस चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने के लिए मदद करते हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं। तो अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-7604 पे HK मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, आप लंदन के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनसे उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाइएगा और उनकी सेवाएं लीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटरलू गोल्फ में तो आप सेव फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1260-5195461260। आपको खाना ऑर्डर करना है, केटरिंग, लाइव कुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट न्यूली रेनोवेटेड है, क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया भी मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप बुकिंग के लिए 905-814-1703 पर कॉल कर सकते हैं, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कोई बड़ा प्यारा सा गीत लता जी का गाया हुआ। तो फिर इसी तरह बहुत सारे सिंगर हैं जो उनके गाने हम आपको आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फिर आपको जो भूले बिसरे गीत भी हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा जो हर रोज सुनते हैं थोड़ा आपको जो गोल्डन एज है, बहुत खूबसूरत गाने हैं, आपकी जो शाम है वो बढ़िया।

अगर आपके लिए ये कोई और ही जैसे आर्टिस्ट है वो गा रहे हैं, ओरिजिनल लता जी का ही गाना, ओरिजिनल लता जी का ही लगाना चाहती हूँ, तो लेट्स गो टू द सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग द सोम।

0: चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
1: जी हाँ, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, ये फिल्माया गया था लता जी और किशोर कुमार का गया हुआ गीत है, देवानंद और सीना तमान हीरा पन्ना फिल्म। तो बड़ी बहुत बढ़िया फिल्म है, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब आपको अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर बढ़िया टीवी लेटेस्ट किचन गैजेट्स आउटडोर फर्नीचर लेटेस्ट आपको बारबेक्यू लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए स्पेशल्स देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-7900-45-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और अब अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा और कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-1652-4607-04 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको धड़कता भड़कता गीत देसी गर्ल।

0: हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी गाना। आपके लिए स्मृति चौहान, विशाल ददलानी उनकी तरफ से गाया गया, और अभिषेक और प्रियंका जॉन इब्राहिम दोस्ताना फिल्म में फिल्माया गया था। बहुत ही बढ़िया गाना है, उम्मीद रखती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो अब आपके लिए जब नई नई शादी होती है तो फिर घूंघट होता है, वो एक एक मजाज होता है कि वो दर्शाया गया है पुराने जमाने से। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तो रे आगे है, तो ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने मास्टर कलीजन दीपू आपके लिए, आप लंदन में मौजूद हैं, तो अगर आपने किसी किस्म का भी कलीजन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में,
1: Please come blue light blocking auto.
0: आप मास्टर कलीजन दीपू गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, आप वहाँ पे जाइए, उनकी सेवाएं लीजिए। तो मास्टर कलीजन दीपू काम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, फिर उनको कॉल करिएगा और सेवाएं लीजिएगा। और अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 1715 सिसमत रोड मिसिसागा में मौजूद है। तो और जानकारी के लिए 905-625-0055 पे कॉल कीजिए, 905-625-0055। तो अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स, आप उनको कॉल कीजिए 416-524-7416-524-6704। और फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी वाला सारा की भी सारा सामान लेना है घर का, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045, 905-799-0045, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जानकी सर में, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाने आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम को पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो आइए, अभी काफी अच्छे अच्छे अभी मास्टर स्लीम का प्रोग्राम आपके लिए होने जा रहा है टोरंटो में, और ये आपके लिए 24 जुलाई को होने जा रहा है। तो मास्टर स्लीम को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो कमाल की गायकी है उनकी, क्लासिकल में गाते हैं, तो आप जरूर जाइएगा और उनको सुनिएगा। और टीवी पे तो हम उनको काफी देखते रहते हैं। तो आइए, आपके लिए थोड़ी सी, आपके लिए मेरे ख्याल में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी, कोई बढ़िया सी। बच्चों, आजकल समर है तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां, जैसे कि जिनमें कुछ मॉरल हो, कुछ उनको सीखने को मिले, ऐसे में एक अच्छी सी कहानी है। तो जैसे कि कभी आप हमेशा जब किसी से मिलते हो, किसी से आगे प्यार बढ़ाते हो, तो आप सबसे पहली उम्मीद आपकी यही होती है कि आपके साथ वो लोग अच्छा बर्ताव करेंगे और आपसे वफादार रहेंगे। यही एक चीज सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रिश्ते में। तो कहानी है कि पहले वो बातचीत ऐसे होती है, अमित बार बार साधना को पुकार रहा था, लेकिन साधना उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है, सड़क के किनारे पटरी पर ना जाने कितनी देर पर बैठा रहता है, सोचता रहता है, फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर साधना को मनाने चल देता है। और इस इधर साधना की जो आंखों में आंसू लिए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर साधना जी सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है, तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती है। बेटी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है, अमित से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो, आज आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, साधना ने बोला, और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी और मुंह करके लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। साधना की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था, आखिर ऐसी क्या बात थी जो साधना इतनी परेशान है। यही सोचकर शोभा भी इधर उधर टहलने लगती है, तभी डोरबेल बजती है। शोभा जी गेट खोलती है तो सामने अमित खड़ा था। आंटी जी, साधना है क्या? शोभा जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई, वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी के हाँ कहने पर अमित साधना के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक अमित को देखकर साधना उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार साधना को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, साधना आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा जी फिर से बोली, ये क्या की बेटी, अमित कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आप रोती रही, आखिर हुआ क्या था? दरअसल अमित और साधना की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था, साधना भी उसके गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से दो चार लोग होंगे। साधना बार बार घड़ी देख रही थी, अमित उससे वही उसके पास वाले बेंच में बैठा था। साधना अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आने आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा। तो साधना बोली, हाँ वहां से आगे गांव में जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चले जाइए, जहां बस का कुछ पता नहीं कब आएगी, रात ज्यादा हो रही है। अगर बस भी आ भी गई तो रात को 2 बजे आपके बुलंदशहर उतरेगी, रात में गांव कैसे जाएंगी, सुबह की बस पकड़ लेना। साधना डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ये सुनकर बोला, नहीं यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। साधना ने डरते हुए कहा, मैं किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना, घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है, घर में मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। साधना के पास कोई साधन नहीं था, वह अमित के घर चली गई। अगले दिन जब वे जाने लगी तो अमित ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और साधना ने रुकने का फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। साधना बहुत खुश हुई, अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधना एक दूसरे को पसंद करने लगे। साधना का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। साधना एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया। इधर अमित ने अपनी कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और साधना में दूरी बढ़ने लगी। अमित के दोस्त उसे बताते कि साधना किसी और लड़के साथ घूमती है, लेकिन अमित इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगा, साधना उसको फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अमित अपनी माँ से मिलने आया तो उसने साधना को बाहर मिलने के लिए बुलाया। अमित ने साधना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। साधना ने साफ मना कर दिया। अमित ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतजाम कर लिया है, जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है वह उससे अच्छा मिल जाएगा। इतना कहकर अमित और साधना ने कही सुनी हो रही थी। अभी तभी अमित ने कहा, साधना भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फोन भी नहीं उठाती, साफ साफ बताओ बात क्या है। साधना बोली, अमित मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जीवन में शादी सब कुछ नहीं होती, यहाँ आजादी से जीना ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। यह सुनकर अमित को गुस्सा आया और उसने कहा, बात यह है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरी दोस्तों ने सब बता दिया है। साधना को बहुत गुस्सा आया और वह अमित को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। अमित साधना से बेइज्जत होकर अगले दिन ही अपनी
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
2: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
3: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ
2: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
3: ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ
2: ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ
3: ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਗਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ
2: ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
3: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ
2: ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ
4: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
5: ਹੁਣ ਲਓ ਮੌਕਾ HST ਰੀਬੇਟਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਅਤੇ ਡੀਟੈਚ ਕਰ ਸੈਲਿੰਗ ਨਾਓ ਸਿਰਫ $649,990 ਤੋਂ ਮਿਲਟਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਟਬੀ ਸੀਟਨ ਅਤੇ ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-840-7135 905-905-840-4135 या टेक्स्ट मैसेज करो 416-450-6680 416-450-6680 या ईमेल करो sales@paradisedevelopments.com वधेरे जानकारी लिए विजिट करो paradisedevelopments.com
6: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगिया गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजुर्बा है कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू ए कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी ਆਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਟ bridgemohan.com
5: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ LAL ਲਾਈਟ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੈਂਸ ਸਰਜਰੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਲੈਂਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਰਜਨਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੰਫਰਟ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਸੇਫ ਸਮੂਥ ਅਤੇ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਕੈਟਰੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਲੂਮੀਆ ਆਫਿਸਿਸ ਇਨ ਵੌਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਬੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਘੇੜਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabi@lumia.io punjabi@lumia.io 289-982-9597 289-982-9597

0: और उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5533 पर कॉल कीजिए। 9054560733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: पातशाही दसवें कब्रबाज बेनती चौपाई अमरी करो हाथ तेरछा पूरण होए चित्त की इच्छा सब चरणन मन रहे तुम्हारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सदा तुम पाओ पाप।

पूरण होए हमारी आशा, दूर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छोड़ कोई अब न जाओ, घर जाओ तो तुमके आओ, जीवत से हमारे पाए, चुन चुन शकल हमारे भारी है, आप बात है मुझे उपले, मरण काल पाता से मरे, जो सदा हमारे बच्चा, जीस तुझ जो पलियो रच्छा, राख ले हो महरा खड़वारे, सारे पसंद सहाये प्यारे, इन बंद दुश्मन के बंद।

ओर कचरे न जान महादेव को है सदा शिव निरंकार का चीन तुम्हें देव आप अपनी मुझ है जीते वर्ण तुम्हें तुम्हें कोई कीती तुम्हारा न खाना चाहे तो सारा

0: राजा मालवा द्वापा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 और 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ले बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 हर पाउंड तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135
1: अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता धृणीये बीजं सूर्यगुं शक्तिः।

पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्यवज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, जय साईं राम। सबसे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, तो तभी हमारी आवाज आप तक पहुंचती है। और आप सभी का धन्यवाद करते हैं तो क्योंकि आप इतने सालों से हमें सपोर्ट करते आ रहे हो, हमारे प्रोग्राम को सुनते आ रहे हो, सराहते आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सबसे पहले परमात्मा का नाम ज्यादा प्ले करते हैं ताकि आपके लिए आपके घर में कार में अच्छी वाइब्स हो जाएं। तो इतनी लंबे समय के लिए आपके लिए ये सारा कुछ हम प्ले करते हैं पॉजिटिव फीलिंग के लिए। गाने तो सभी सुन लेते हैं कहीं ना कहीं पे, तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज इस वीकेंड मौसम बहुत अच्छा है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है। ठंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बस बहुत ज्यादा गर्मी थी कल थोड़ा, तो लेकिन बाद में बारिश हो गई तो थोड़ा बेहतर हो गया। आज तो ठीक ही है, ना इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, थोड़ी सी बारिश हो गई बीच में, थोड़ा सा धूप भी आ गई। तो आइए इसी को एंजॉय करते रहेंगे। जो भी ऊपर वाला हमें देगा उसका हम धन्यवाद करते हैं और उससे प्रे करते हैं कि इस दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए और इस दुनिया में शांति के लिए, फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहते हो और बढ़िया प्राइस पे लेना चाहते हो तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है और आप उनकी वीकली मंथली स्पेशल देखने के लिए आप बढ़िया टीवी लेंगे, आउटडोर फर्नीचर लेना है, घर किचन की गैजेट्स लेटेस्ट एडवांस चाहिए, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स कनाडा भर में मूव करने के लिए मदद करते हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं। तो अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-7604 पे HK मूवर्स को आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, आप लंदन के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनसे उनकी सेवाएं ले सकते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाइएगा और उनकी सेवाएं लीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटरलू गोल्फ में, तो आप सेव फ्रेंड को कॉल कीजिए 519-546-1260। आपको खाना ऑर्डर करना है, केटरिंग, लाइव कुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट न्यूली रेनोवेटेड है, क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया भी मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप बुकिंग के लिए 905-814-1703 पर कॉल कर सकते हैं, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो आइए अब आपको सुनाते हैं ये कोई बड़ा प्यारा सा गीत लता जी का गाया हुआ। तो फिर इसी तरह बहुत सारे सिंगर हैं जो उनके गाने हम आपको आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए फिर आपको जो भूले बिसरे गीत भी हैं वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा जो हर रोज सुनते हैं थोड़ा आपको ये गोल्डन एज है, बहुत खूबसूरत गाने हैं।
1: मोबाइल
0: आपकी जो शाम है वो बढ़िया

आपके लिए ये कोई और ही जैसे आर्टिस्ट है वो गा रहे हैं, मैं ओरिजिनल लता जी का ही गाना ओरिजिनल लता जी का ही लगाना चाहती हूँ, तो लेट्स गो टू द सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग द सोम।

0: चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
1: जी हाँ, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, ये फिल्माया गया था लता जी और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है, देवानंद और जीनत अमान हीरा पन्ना फिल्म। तो बड़ी बहुत बढ़िया फिल्म है, आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब आपको अगर किसी किस्म का फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया टीवी लेटेस्ट किचन गैजेट्स आउटडोर फर्नीचर लेटेस्ट आपको बारबेक्यू लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल पे है। तो और जानकारी के लिए स्पेशल्स देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और अब अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, वो कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं। तो आप उनको कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-526-52467-04 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको धड़कता भड़कता गीत देसी गर्ल।

0: हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी गाना। आपके लिए सुनिधि चौहान, विशाल ददलानी उनकी तरफ से गाया गया, और अभिषेक और प्रियंका जॉन इब्राहिम दोस्ताना फिल्म में फिल्माया गया था। बहुत ही बढ़िया गाना है, उम्मीद रखती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो अब आपके लिए, जब नई नई शादी होती है तो फिर घूंघट होता है, वो एक एक मजाज होता है कि वो दर्शाया गया है पुराने जमाने से। घूंघट नहीं खोलूंगी, खोलूंगी सैया तोरे आगे। तो ये गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने मास्टर कलीजन डिपू आपके लिए, आप लंदन में मौजूद हैं, तो अगर आपने किसी किस्म का भी कलीजन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में,
1: These Kumbo Blue Light Blocking Auto
0: आप मास्टर कलीजन डिपू गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, आप वहाँ पे जाइए, उनकी सेवाएं लीजिए। तो मास्टर कलीजन डिपू काम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए, फिर उनको कॉल करिएगा और सेवाएं लीजिएगा। और अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 715 सिसमत रोड मिसिसागा में मौजूद है। तो और जानकारी के लिए 905-625-0055 पे कॉल कीजिए, 905-625-0055। तो अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स, आप उनको कॉल कीजिए 416-524-7416-524-6704। और फिर आपने किसी किस्म की भी, आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी वाला सारा, लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी वाला सारा की भी सारा सामान लेना है घर का, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045, 905-799-0045, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
2: घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूं।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जानकी सर में, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, गाने आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम को पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो आइए अभी काफी अच्छे अच्छे अभी मास्टर स्लीम का प्रोग्राम आपके लिए होने जा रहा है टोरंटो में, और ये आपके लिए 24 जुलाई को होने जा रहा है। तो मास्टर स्लीम को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो कमाल की गायकी है उनकी, क्लासिकल में गाते हैं। तो आप जरूर जाइएगा और उनको सुनिएगा, और टीवी पे तो हम उनको काफी देखते रहते हैं। तो आइए आपके लिए थोड़ी सी आपके लिए मेरे ख्याल में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी, कोई बढ़िया सी। बच्चों आजकल समर है तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां, जैसे कि जिनमें कुछ मॉरल हो, कुछ उनको सीखने को मिले, ऐसे में एक अच्छी सी कहानी है। तो जैसे कि कभी आप हमेशा जब किसी से मिलते हो, किसी से आगे प्यार बढ़ाते हो, तो आप सबसे पहली उम्मीद आपकी यही होती है कि आपके साथ वो लोग अच्छा बर्ताव करेंगे और आपसे वफादार रहेंगे। यही एक चीज सबसे बड़ी बात होती है किसी भी रिश्ते में। तो कहानी है कि पहले वो बातचीत ऐसे होती है, अमित बार बार साधना को पुकार रहा था, लेकिन साधना उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है, सड़क के किनारे पटरी पर ना जाने कितनी देर पर बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर साधना को मनाने चल देता है, और इस इधर साधना की जो आंखों में आंसू लिए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर साधना जी सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है, तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती है। बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है, अमित से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो। आज आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, साधना ने बोला, और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी और मुंह करके लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। साधना की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था, आखिर ऐसी क्या बात थी जो साधना इतनी परेशान है। यही सोचकर शोभा भी इधर उधर टहलने लगती है, तभी डोरबेल बजती है। शोभा जी गेट खोलती है तो सामने अमित खड़ा था। आंटी जी साधना है क्या? शोभा जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई, वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी के हाँ कहने पर अमित साधना के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक अमित को देखकर साधना उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार साधना को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, साधना आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा जी फिर से बोली, ये क्या की बेटी, अमित कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आप रोती रही, आखिर हुआ क्या था? दरअसल अमित और साधना की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था, साधना भी उसके गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से दो चार लोग होंगे। साधना बार बार घड़ी देख रही थी, अमित उससे वही उसके पास वाले बेंच में बैठा था। साधना अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आने आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा। तो साधना बोली, हाँ वहां से आगे गांव में जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चले जाइए, जहां बस का कुछ पता नहीं कब आएगी, रात ज्यादा हो रही है। अगर बस भी आ भी गई तो रात को 2 बजे आपके बुलंदशहर उतरेगी, रात में गांव कैसे जाएंगी, सुबह की बस पकड़ लेना। साधना डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ये सुनकर बोला, नहीं यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को नहीं जानती। साधना ने डरते हुए कहा, मैं किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना, घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है, घर में मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। साधना के पास कोई साधन नहीं था, वह अमित के घर चली गई। अगले दिन जब वे जाने लगी तो अमित ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और साधना ने रुकने का फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। साधना बहुत खुश हुई, अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधना एक दूसरे को पसंद करने लगे। साधना का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। साधना एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया। इधर अमित ने अपनी कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और साधना में दूरी बढ़ने लगी। अमित के दोस्त उसे बताते कि साधना किसी और लड़के साथ घूमती है, लेकिन अमित इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगा, साधना उसको फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अमित अपनी माँ से मिलने आया तो उसने
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नू,
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नू,
1: गुरु साहबान पीरां फकीरां दी धरती नू,
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नू,
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नू,
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नू,
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नू।
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
3: Punjabi Lehra ya chalo AM 530 nu duniya de kise vi kone de vich sunan de layi aaj hi download karo Punjabi Lehra di app. PUNJABILEHRAN जे तुसी साड़ी ऐप डाउनलोड कर चुके हो ता उसनु अपडेट भी जरूर करो।
4: तुसी ऑन कर चुके हो जी प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो AM 530 ते आज बहुत ही प्यारी सवेर जी एतवार दा दिन 5 जुलाई 2026 ते मैं रुपिंदर कौर जी आप सब नु बहुत ही आदर सत्कार प्यार भरी सत श्री अकाल सलाम नमस्ते ते बहुत निघी प्यारी जी गुड मॉर्निंग आखदी हां। सो उम्मीद करदी हां कि इस आवाज़ नूं तुसी भुले तो नहीं होने। सो अज तो जी फिर तो थोड़े रूबरू हाँ तो आओ इकट्ठिया इस सवेर की शुरुआत करिए। तो सब तो पहला जी आओ सरवण करते हैं श्री दरबार साहब अमृतसर तो अज का पावन मुख वाक।

न पाया जाए। गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभु को सोए। गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम मिले मन मानिया, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kala to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लबदांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सच मुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 बार 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
2: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, और जिहड़े दोस्तां ने सानू हुणे ट्यून अप कीता जी, उहनू ट्यून इन कीता, माफ करना जी, सो उहनां नूं असीं निघी जिहा आखदे हां, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल बन जांदा है। 12 तों 1 रामस पंजाबी ते 1 तों 2 सुणदे हो प्रोग्राम नज़रिया। मैं थोड़ा होस्ट मजीत सिंह गिल। कोई भी गलबात तुसीं स्टूडियो च करनी हुंदी है ते फिर 416-233-7368 जां 8297 टैलीफोन नंबर हुंदे ने 416-233-7368 जां फिर 8297 किसी एक नंबर ते डायल करके तुसीं अपनी गलबात जे कोई कहनी चाहुंदे हो ते कही जा सकदी हुंदी है। ट्रैफिक दे विच किते रुकावट पई देखदे हो ते तद वी तुसीं इन्हां नंबरस ते कॉल कर देनी, तां कि असीं बाकी दोस्तां मित्रां दे नाल इह जानकारी जे सांझी करांगे ते डेफिनेटली उहनां दा समां जरूर जिहड़ा उह बचा सकण दे विच सहाई सिद्ध हो सकदे आ जी। अदरवाइज़ तुसीं प्रोग्राम तों बाद विच मेरे नाल कोई भी गलबात करनी है ते फिर 416-669-1379 टैलीफोन नंबर हुंदा है, 416-669-1379 इस नंबर ते प्रोग्राम दे संबंध विच जां फिर रियल स्टेट संबंधी कोई भी जानकारी सांझी करनी होवे, कोई जानकारी चाहीदी होवे ते इस नंबर ते डायल करके तुसीं लै सकदे हुंदे हो 416-669-1379। कोई टैक्सट वगैरह तुसीं कोई जानकारी तुहाडे पास भेजनी होवे तां भी इस नंबर ते तुसीं मैनू मैसेज कर सकदे हो 416-669-1379। नहीं तां फिर तुसीं जरूर स्टूडियो कॉल कर लेनी है जी 416-233-7368 जां 8297। आपां जुड़ चुके हैं इस वेले प्रोग्राम नज़रिया दे नाल, और मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल, और साडी गलबात तुहाडे तक पहुँचाउण दे विच मदद सानू फास्ट फायर्ड पीज़ा दे वलों मिलदी है। 205 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन दे विच लोकेटेड ने, 905-595-55 टैलीफोन नंबर है, 9055-00-9555 ते गलबात कीती जा सकदी है। ऑप्टिकल वन 905-455-0752, पंजाबी वन नेचर 416-937-2061, 416-937-2061 ते पंजाबी वाई नेचर वालों के नाल गलबात की जा सकती है। एयरपोर्ट नेसा 905-791-9900 टैलीफोन नंबर है, ट्राई सिटी प्रोफेशनल रियल्टी तो अवतार सिंह जी बडियाल 416-464-2067 तुसीं उन्हां नाल गल कर सकते हो। किंग टोइंग 416-677-2222 टैलीफोन नंबर है, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 से गल की जा सकती है। ड्रीम होम अपलायंसिज 905-805-3000 टैलीफोन नंबर है, प्रीमियम आटो रिपेयर्स एंड यूज कार सेल तो गुरप्रीत अड्डा जी 416-747-6800 से गल कर सकते हो। गिल स्वीट फैक्टरी टोटल 6 लोकेशन ने कैनेडा भर के 4 साढ़े इतने GTH ने, हैड ऑफिस कॉल की जा सकती है 905-799-2616 टैलीफोन नंबर है। गिल्स स्वीट फैक्टरी 9057992616 से तुम उन्होंने गलबात कर सकते हो गिल स्वीट फैक्टरी के।

0: से गवर्नमेंट बिलियन ऑफ डॉलर्स रिफ्यूजी के अकोमोडेशन पे 1.1 बिलियन डॉलर लगा दिए गवर्नमेंट ने, उनके हेल्थ केयर पे 1 बिलियन लगा दिए, मतलब 1000 मिलियन। तब तो मैं हैरानी होती नहीं है जब गवर्नमेंट एजुकेशन में स्पेंड कर रही है, जबकि गवर्नमेंट 2 हफ्ते बाद कट करने वाली है ग्रांट्स में, खत्म कर रही है ग्रांट्स नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से। तो आज एनरोल करेंगे ग्रांट आएगी, 2 हफ्ते बाद करेंगे ग्रांट नहीं लोन आएगा। लोन तो हमारे ऊपर पहले से ही है, इसलिए पीछे ना रहें। जब गवर्नमेंट इतना पैसा देश के बाहर भेज रही है, थोड़ा सा देश में लगा रही है, तो उसको मिस ना करें।
1: एंड दोस्तों तुसी कॉल कर लो जे तुहाडे मन दे च, वैसे मैं ट्राई कर रहे हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन क्लीयर किए जाने, पर तुहाडे मन दे च कोई सवाल ने कॉल करो, फ्री कॉल आ। कॉल करने ते इन्हां ने ओवर द कॉल ही तुहानू वैल्यूएट करके तुहाडे दस देना कि तुसी 50,000 डॉलर लई एलिजिबल हो, तुसी 1,00,000 डॉलर लई एलिजिबल हो। इन्हां ने तो 199 ते जा 499 डॉलर चार्ज करने आ, वह भी उदों जदों तुहाडे खाते दे विच पैसे आ गए। नंबर टू कॉल 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 ते गलबात की जा सकती है। अच्छा भाई जी, ये डेडलाइन तुसी वार वार कह रहे हो कि डेडलाइन आ रही है, वो डेडलाइन कदों आ? की असी जे अज कॉल करांगे साडे कोल इनफ टाइम हैगा अप्लाई करन दा?
0: आज के टाइम अगर आप कॉल करेंगे, आपके पास टाइम है, हमारे पास टाइम है इनफ अप्लाई करने का। देखिए जी, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बिजनेस डिपेंड करता है, फंडिंग डिपेंड करती है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को किसी तरीके का कोई स्टोर है, आज कैनर डे पे मैं सेल दे रहा हूँ और 2 हफ्ते बाद वही सेल फिर से दूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट? क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम नहीं है। इसलिए आप डिले करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपके आस पड़ोस के सारे जितने आपके जानने वाले वो सब एनरोल हो चुके हैं। हम 8 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल तो मैं AM 530 भी हो गया है, अवेयरनेस करते हुए इतनों को तो हमने असिस्ट कर दिया है। तो मतलब एक अजीब बात भी है, अगर लोगों के पैसे, अगर लोग अपने को, लोग दूसरे बंदे को नुकसान तो बता देते हैं, अच्छा नहीं बताते। मतलब किसी के खाते फंडिंग आ गई, दूसरे को नहीं बताएगा वो कि मेरा काम हो गया, चलो। मतलब रेफर भी आप करें इस चीज में, आप औरों का भी भला करें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना। कुल अगर आप 5 कॉल लगाएंगे, 3 लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके होंगे, 2 हमसे होंगे, जो कह रहे नहीं हुए वो कुछ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सब एनरोल हो चुके हैं।
1: ते पेंशन वाले बारे एक बार दोबारा दस दो जी, जेडे साडे पेनपरा पेंशन ते ने, जां जेडे कम नहीं कर रहे राइट नाउ। कई बार हो जांदा कि भाई मैं रिटायर ही हो चुके हैं, हजे पेंशन ते भी नहीं आया, रिटायर भी हो चुके, यानी कि उन्होंने इनकम रुक चुकी, उन्होंने बच्चे कमा रहे ने, बच्चे वधिया कमा रहे ने, फिर भी वो हसबेंड वाइफ जेडे ने वो एलिजिबल ने जी?
0: बिल्कुल जी, एलिजिबल है। और लाइक देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ एज, सेक्स, जेंडर, है ना, इन बेस की पॉलिसीज में। तो आप लाइक अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, आप पेंशन पे जाए, आप कॉल करें, असेसमेंट कराएं। फैमिली ऑफ 2 को अप टू 45,000 की फंडिंग बन जाती है, जो रिटायर्ड कपल है या फिर जो यंग कपल है, जिसमें से 25,000 तो ग्रांट का पैसा है, जो रेस्ट पोर्शन है वो लोन है 0% पे, और 1.5 साल बाद भी 2.5% साल का ब्याज है। ऐसा लोन आपको कहाँ मिलेगा, जो डेफर भी हो जाता है अगर आपको जॉब नहीं लगी। ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको उस फील्ड में जॉब लेनी है, तो कोई कैच है ही नहीं इस काम में। आप कॉल करें, असेसमेंट कराएं। अगर आप फैमिली ऑफ 4 है तो फंडिंग ज्यादा है, फैमिली ऑफ 5 है तो फंडिंग और ज्यादा है। फैमिली साइज पे डिपेंड करती है फंडिंग, जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फंडिंग, और जितनी कम इनकम है आपकी छोटे से असेसमेंट पे, उतना ज्यादा फायदा आपको है, आपका फायदा हाथी जितना है। पीछे ना रहें,
1: फाइल लगी हुई है कि मैं एलिजिबल हां?
0: बिल्कुल एलिजिबल है, इनमें इनको 45,000 की फंडिंग मिलेगी, 25,000 उसमें से ग्रांट है, और इनको जो टेक होम नेट ग्रांट बनेगी वो बनेगी 14,500 की, साथ में 17,000 का लोन, टोटल 32,000 की फंडिंग है, घर लेके जा रहे हैं। अगर बीच में अगर इनका किड भी हो जाता है तो फंडिंग में 10,000 ऐड हो जाएगा।
1: लो भाई, गुरसिमरन बधाइयां तुहानू, तुसी भी एलिजिबल हो, ते तुसी कॉल कर लो 437-264-3175 437-264-3175। अच्छा भाई, लोन भी, लोन दी टर्म्स एक बार दोबारा दस दो जी।
0: हाँ जी, सो एग्जाम्पल लेते हैं, फैमिली ऑफ 3 का, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, उनको 60,000 की फंडिंग आती है, 30,000 ग्रांट है, 30,000 ऑप्शनल लोन है, लोन ऑप्शनल है, नहीं लेना मत लीजिए, ग्रांट अच्छी बन जाती
1: है, लोन लगा के पैसा चाहिए सानू जी, तुसी टर्म्स दसो।
0: हाँ, अब इसमें पहला है कि लाइक लोन 0% है 1 साल तक, नंबर 1। नंबर 2, 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करते हैं, किससे 1.5 साल बाद स्टार्ट है, और उसके बाद नंबर

0: थ्री जब किस्त स्टार्ट है 1.5 साल बाद सिर्फ 2.5% साल का ब्याज है, गाड़ी का भी 8% होता है ब्याज, और लोन चौथी बार लोन बिना क्रेडिट चेक के अप्रूव होता है, क्रेडिट हिट ही नहीं होता, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा आपको यहाँ पे फंडिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ आपको, अब घर की किस्त मेरी मान के चलो 2500 थी तो 1500 टुवर्ड्स इंटरेस्ट, 1000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल, ठीक, इनिशियल ऐसे रहता है 10-15 साल तक
1: जी।
0: इस लोन में ऐसा नहीं है, इस लोन में अगर आपका किस्त बन रही है 162 तो उसमें से $23 ब्याज है महीने का, और वो फ्लैट है पूरे 10 साल ऐसे ही रहेगा, ओपन लोन है, आप 3 साल बाद भी पे कर सकते हैं, मैंने अपना लोन 3 साल बाद पे कर दिया था। तो इसमें इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो अप टू 100,000 की फंडिंग, 50,000 लोन, 50,000 ग्रांट,
1: बहुत
0: मतलब फैमिली साइज पे डिपेंड है। आप कॉल करें, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, आपका ही फायदा। हमारी फीस कितनी है, $199, $499 फ्लैट फीस है, कमीशन बेस है ही नहीं कुछ, आप नहीं देंगे तो आपके पड़ोसी दे देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता इतना। आप अपना बेनिफिट करें और कॉल करें और असेसमेंट कराएं।
1: नंबर साझा कर दो,
0: 437-264-31-75, 437-264-31-75 होने, कॉल करो तो एस्टिमेट लो जी, 437-264-3175। ऑफिस आप कल भी आ सकते हैं, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, 8 साल से धंधे में है सर, आज शुरू नहीं करा, बाल सफेद होंगे करते हुए, और बाकी लाइक प्रॉपर ऑफिस है, 1000 square feet का, 8 employee काम करते हैं, कोई कैच नहीं है, आए ऑफिस, कोकोनट वाटर की 200 पड़े हुए हमारे पास बॉटल्स
1: जी। वेरी गुड सर। दोस्तों जे तुसी PR हो, सिटीजन हो, इंग्लिश तुहानू आउंदी आ, ते इनकम तुहाडी 70,000 जां इस तों घट आ, तां बाई उहनां नूं कॉल कर लो, गवर्नमेंट दी जो इह स्कीम आ कि तुसी आप जप नूं एजुकेट करो ते उहदे लई ग्रांट ते लोन दित्ता जा रिहा, ते इहदा हुण लास्ट कॉल ही आ क्योंकि इह ग्रांट जिहड़ी बंद हो रही आ। सो राइट नाउ कॉल करके तुहाडे मन च जो भी क्वेश्चन आ कॉल करो, ते जे खाते च $1,00,000 आउंदा किहनूं नहीं चंगा लगदा, नागपाल साहब जी नूं कितना देना, $199 जां फिर $499, वह भी जदों तुहाडे खाते च पैसे आ गए, आ लो नंबर राइट वे कॉल करो, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। बहुत शुक्रिया नागपाल सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। जिहड़े रेडियो प्रोग्राम चढ़दी कला नाल 4 बजे तक तुसीं इस प्रोग्राम का आनंद माण रहे हो। आज तुहानूं लैके चलीए ग्रैंड होम फर्नीचर ते, सुखबाई जी लंघियाओ।
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बिल्कुल ग्रैंड होम फर्नीचर, ग्रैंड होम फर्नीचर, ग्रैंड होम फर्नीचर का मैसेज दे रहे हैं जी परिवारों तक, लास्ट एंड फाइनल कॉल जिहड़ा तुहानू सद्दा पत्र दे रहे हैं, क्योंकि कैनेडे वाली जे तुसी प्राइजेस लॉक करनी चाहते हो तो अज असीं रात के 8 बजे तक तुहाडा इंतजार कर रहे हैं। तुसी किसी भी तरह की फर्नीचर की बाइंग करनी चाहते हो, बेडरूम सैट लेना चाहते हो, डायनिंग टेबल चाहिए ने, ऑडी वाले डायनिंग टेबल चाहिए ने, मसाजर पावर रिकलाइनर लेना चाहते हो, हार्ड फॉर्म के मैटर चाहिए ने, तो फटाफट ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਮਾ ਲਓ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾਲ 6 ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਟੇਬਲ ਪਲੱਸ 6 ਚੇਅਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, $399 ਦਾ, $399 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਚੇਅਰਾਂ, $399 ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਤੋਹਫਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੁਈਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਮਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ, 294 ਵਾਕਰ ਡਰਾਈਵ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ।
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: हवलदार गंडा सिंह रिपोर्टिंग सर।
3: ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸੁਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਕੀ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਨੀ ਲਾਈ
4: ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋ
3: अपने बिजनेस नू प्रमोट करना चाहते हो सफलता की कुंजी साडे कोल है तुसी मॉन्ट्रियल टोरंटो या वैंकूवर अंदर अपने बिजनेस का संदेश देकर कामयाबी की मंजिल वाल जल्दी ही वध सकते हो स्पेशल पैकेज का फायदा उठाने लई तुसी साडे हेड ऑफिस नाल संपर्क करो
4: पहली शर्त यह होंगी है कि जो उस घर कोई खरीदन आ गया उन्होंने उसे वेले घर खाली करना पेगा छड़ना पेगा दूजी शर्त है कि घर जो इस तरह होना चाहिए जिम्मे कोई भी ना रहा हो मतलब किसी चीज कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तीजी चीज है जेडे कह लो शीशे वगैरह एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ने चौथी चीज आ कि बेड जेडे ने एदा होने चाहिए ने जिवें ओदे उपर कदी कोई पहला सुत्ता ही ना होवे मतलब बिल्कुल नवा लगना चाहिए घर हाँ
5: नहीं एक मिनट
4: हाँ
5: ये मतलब उथे घर च रहन दे ले सुख आ के सजा आ
4: चंगे काम दस मेनू चल ठीक है।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई हाँ
0: तू
1: एवं कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंगे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ मैनेज करना केड़ी केड़ी चीज होनी चाहिए आ बच्चा ने केड़ी केड़ी चीज जेड़ी फायदा पहुंचाऊगी समर कैंप के दौरान यह सारी चीजा ऑर्गेनाइज कर दे बन जा
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किदा दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया चंगा लगा नी
1: हेलो
0: मुक दी गल जे अगले मेरे को काम कराउणगे कल नूं भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले दा जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देण फेर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दीआं गल्लां
2: मेरे रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं बनती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तातले नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: मेनू एक गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड के छड़ती?
1: ओए पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।